0: गुरु
1: अखा बंद करके अखा बंद कर जुड़ के पहला मन नु एक करो ना अखा च दो हिस्सों च वंडिया जांदा जोत है ना एकाग्र करो फिर एक ना जुड़ो
0: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वा, गुरु।

ते आया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदे आप विछोड़े आया आप मिलाया।

सो इतनी सेवा प्रवान करनी आओ हूँ गुरबाणी विचार सरवण करो भाई साहब भाई अगत सिंह जी उन्होंने पासों प्यार सरकार से सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बैकुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत

परम सम्मान योग, जुग जुग अटल चवर शतर तकत दे मालक, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ, आप सारे ही वड़भागी हो, तनता दे योग हो, जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो, अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ साम दे दीवाना विच जो गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल गई है, वो विचार आपा सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपां विचार कर रहे हां, ओ पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी